0: इच्छा रहे बहुत
1: पर शाम तक हो जाएगा नहीं
0: आज तो साल
1: थोड़ा नहीं तीसरा हो जाएगा नहीं वाले देखिए